LG ले आयो नया LG Essential Series अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में LG LG लाइफ्स गुड

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, हे हे हे, नैनाजी थैंक यू, मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब थैंक यू, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं मेरी टांगें चल सकती हैं, मैं नाच सकता हूँ।

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो डीजे

दूं डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है।

सुन का पेशेंस मेरी टेस्ट न कर रहा डीजे आले गाना बजा दे जून सब भी कह रही है बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है।

बड़े बड़े दिया होती है ऐसी बड़े की पीछे तो करती है ऐसी पैसी मैंने ही बनता जो देखा तुम्हें सफल हो गया जैसे तो देख जो आगे यहाँ साफ बने ले आगे यहाँ बनी है अब करना कोई चीज है आज बने के खुल के बेबी

How dare you? खबर दार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हाथ से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।

0: कर दे, इतने भी अच्छे नहीं है। पैसा वैसे सब ओके ओके है, पर दिल बड़ा ग्रैंड है। कुछ ऊंची गए धार लेने, लौना खुद एक ब्रांड है। तूने भी शहर है सर पे उठाया, रब ने छुट्टियां लेके बेबी तुझको बनाया। कैसे बताऊं तुझसे दूर कैसे रह रहा हूं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि
1: तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली।